नमः। ॐ श्री साई कनकांबर धारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः।

नमः। ओम श्री साय साधु मानस परिशोधकाय नमः। ओम श्री साय साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साय सकल संशय हरा

प्रेम की यात्रा जब दिल से दिल तक पहुंचती है तब हमें एक अद्भुत सत्य का अनुभव कराती है। जिस प्रभु को हम बाहर खोजते रहे वह सदैव हमारे ही हृदय में विराजमान है। यही आत्मबोध है, शिवोह। स्वामी, आपने ही हमें बताया है आत्मबोध की अनुभूति की पूर्णता केवल ये जान लेना नहीं कि मैं दिव्य हूं, किंतु आत्मसमर्पण में है। और समर्पित हृदय से केवल एक ही प्रार्थना निकलती है, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम। आइए पहले अपने भीतर विराजमान शिवत्व का अनुभव करें और फिर भगवान शिव की तरह श्री राम नाम के आनंद में

मां साई मां इस सृष्टि का सबसे मधुर संबोधन है। मां अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती और उनकी एक पुकार पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती है। मां की पुकार सुनते ही हर दूरी छोटी लगने लगती है, हर कठिन राह सरल हो जाती है, क्योंकि जहां मां का प्रेम हो वह यात्रा नहीं, वह तो मिलन हो जाता है। आज का यह बुलावा केवल किसी तीर्थ की ओर नहीं, बल्कि उस दिव्य मां की गोद की ओर है, जहां हर अश्रु मुस्कान बन जाते हैं और हर हृदय अपनी मां को पा लेता है। आइए करुणामयी साई मां के स्नेहिल प्रेम की इस यात्रा पर चलें। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।

Such is the love of a true devotee. In that state, the Lord is no longer worshipped from a distance. He becomes the very breath of one's life. Swami, we bring this humble last offering of our hearts to you in the form of a kavali. Hamari bas yahi prarthana hai ki Swami, hamare is jeevan ke har shwas mein aapka smaran ho. Yahi virah milan ka sabse sundar roop hai. Yahi prem bhakti ki sarvoch abhivyakti hai. और जब यह प्रेम हृदय की गहराइयों से उमड़ता है तब भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती और यही है स्वरांजलि दिल से दिल तक।

वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए बोलो नित्य नित्य जप

साई राम, द्वार तुम्हारे आए है साई, चरण कमल में करते कोटि नमन। आज मधुर भाव राग और ताल सम करते आपका वंदन, करते आपका अभिनंदन। चुन चुन फूल श्रद्धा से मैंने प्रेम की माला बनाई, मंत्र से दर्शन को मेरा झलक दिखाओ साई। आज की ये सुरों की भेंट आरंभ करते हैं विघ्नहर्ता गजानन की आराधना से। हे गणपति, हमारे सुर निरागस हो, निर्मल हो, दुर्भावना से रहित हो, सिर्फ हमारे गायन में ही नहीं पर हमारे जीवन में भी हमारे सुर ऐसे हो, हमारे भाव और कर्म ऐसे हो जो आपको पसंद आए। इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत करते हैं साई चरणों में स्वरांजलि, दिल से दिल तक।

नमः शिवाय। तीन शब्द में सृष्टि सारी समाए। ओम नमः शिवाय ऐसा मूल मंत्र है कि यह अपने आप में भगवान शिव और उनकी चेतना का संपूर्ण सार रखता है। इस मंत्र के जाप करने से व्यक्ति मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध कर सकता है। महादेव की उपासना से पहले हम वाग देवी माँ सरस्वती का वंदन करते हैं। हे माँ सरस्वती, मधुर स्वरों का दान दो, आपकी भक्ति करूँ माँ, यह मुझे वरदान दो। कंठ में स्वयं आप विराजो और बुद्धि में हमारे ज्ञान का प्रकाश हो। दास की प्रार्थना है, हे माँ अब स्वीकारो

भक्त जन वत्सले अभंग में संत कवि नामदेव विठल को मातृ रूप विठले कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि माँ का प्रेम संसार में सर्वोच्च है। वे श्री राब्धि निवासिनी माँ अम्बे को पुकारते हैं कि माँ उन्हें अपने दिव्य प्रेम से परिपूर्ण कर दे। भक्त और भगवान का बंधन अनोखा है। यदि राधा और मीरा की अनन्य भक्ति पर नजर डाले तो एक भक्ति राधा की है, जिनकी प्रभु से प्रीति अतुलनीय है, तो दूसरी ओर दासी मीराबाई जो प्रभु दरस को प्यासी थी। दोनों की प्रीति में क्या अंतर है? भगवान तो हृदयवासी हैं, पावन निश्चल प्रेम की डोर से खिंचे चले आते हैं। प्रभु हमारी माँ है, हमारे सखा है, वे हमारे स्वामी और हम उनके दास। प्रस्तुत है

आज की अंतिम भेंट से पूर्व स्वामी, हम आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अपने दिव्य संकल्प का अंश बनाया, अपने चरणों से लगाकर हमारा जीवन उद्धार किया। ओ साई, ईच नोट ऑफ दिस म्यूजिकल ऑफरिंग कैरीज द एसेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर द लाइट यू हैव ब्रॉट इनटू आवर लाइव्स। वी थैंक यू स्वामी फॉर द काउंटलेस ब्लेसिंग्स यू हैव शावर्ड ऑन ऑल ऑफ अस। We end today's offering with a Sufi song. The song speaks of the absolute power of a glance from the divine and the bliss of oneness with the eternal one. Jis pal aapki nazre karam mujh par padi, jis pal aapki nazre karam मुझ पर पड़ी, मेरा मैं मुझसे छिन गया। I now exist only in your existence। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से, नैना मिले के।

वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए बोलो नित्य नित्य